जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जोन प्रमाया, साध संग भयो जन्म प्रापत, कर सेवा पज हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभमान, जीवत मरह दरगाह परवान, जो किश होआ सो तुझ ते होग, अवरना दूजा करने जोग, ता मिलिए जा लह मलाई, कहो नानक हर हर गुण गाई, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, कर्म भूम मह बोह नाम, पूर्ण होए तुम्हारा काम, फल पाव है मिटे जम त्रास, नित गाव है हर हर गुण जास, हर हर नाम अंतर उर तार, शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव, अपने प्रभ स्यों हो सावधान, ता तू दरगाह पावह मान, उगत सियाणप सगली त्याग, संत जना की चरणी लाग, सर्ब जी है जा कै हाथ, कदे न विछड़ै सब कै साथ, अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमक माही होवै तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा सत कर मान, गुर कै बचन मटाव हो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी ग्वारी महला पंजवां, गुर का बचन सदा अबनासी, गुर कै बचन कट्टी जम फासी, गुर का बचन जी कै संग, गुर कै बचन रचै राम कै रंग, जो गुर दिया सुमन कै काम, संत का किया सत करमान रहाव, गुर का बचन अटल अशेद, गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद, गुर का बचन कतहु न जाय, गुर कै बचन हर के गुण गाय, गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवै, गुर कै बचन रसना अमृत रवै, गुर का बचन प्रकट संसार, गुर कै बचन नया व्यहार, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वारी महला पंजवां, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ मह राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी सोभा वडियाई, तिस प्रभ को आठ पहर त्याई, रमैया रेन साध जन पावो, गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ, जिन कीता मूड़ ते बक्ता, जिन कीता बे सुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निद पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

दुख काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे।

दीपक दीपाहि अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा तीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिसे आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसे दुख दर्द तेह नानक नसे गौड़ी गुआरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघन्ना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन देखो बिललाते त्रिग तन त्रिग धन माया संगराते रहाओ ज्यो बिगारी कै सिर दी जह दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम ज्यो सुपना होए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन रार्थ काजा ज्यो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए उस खेत कारण राखा खड़े तिसके पाले कछु ना पड़े जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा आप बनाही आप करे रास नानक प्रभ आगे अरदास गौड़ी ग्वारी महला पंजवा बहुरंग माया बहु बिद पेखी कलम कागद सियान पलेखी मेहर

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, ता मह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख एहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईऐ, कहो नानक वड भागी पाईऐ। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाओ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

नाम गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह। कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करीजै। कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै। कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै। कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारी। कमन सो दाता ले संचारी, खोजत खोजत निज कर पाया। अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह। कहो नानक गुर कै विसाह, गौड़ी महला पंजवां गवारी। रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार। एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना। तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

तुम बसना, निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता। व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता। व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा। व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिंगार। पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा। व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात। सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए। ताको कहां व्यापै माए, कहो नानक जिन तूर संत पाई। ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियान को ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वास होते।

जागै जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाउ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा जाकै वस खान सुल्तान जाकै वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सब ते ऊंच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्व व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तह मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद कृपा निध कृपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआरी महला पंजवा साध संग जपियो भगवंत केवल नाम दियो गुरमंत ताज अभमान भये निर्वैर आठ पैर पूजो गुर पैर अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी जब ते सुनिया हर जस कानी।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी जोत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपो होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज

भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक कहो तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहां सनिया का कसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वार री महला पंजवा, कल युग मह मिले आए संजोग। जिचर आ गया तिचर भोगह भोग, जलै न पाइए राम स्नेही। किरत संजोग सती उठ होई रहाओ, देखा देखी मन हठ जल जाइए। प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए। सील संयम प्रिय आग्या माने, तिस नारी को दुख ना जमाने। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, धन सती दरगाह परवानिया। गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, हम तनवंत भागठ सच।

परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट ना आवे वध दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाए। गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर। सतगुरे अपने कौ बलिहार, छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाव। दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा भला कोई ना कही जै, छोड़ मान हर चरण गही जै। कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार। गौड़ी महला पंजवां, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया। जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाव। जां कहो रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो। जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जां का सब किस ता का होए, नानक ता को सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवां, जां कै दुख सुख सम कर जापै, ता को काड़ा कहां बियापै। सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ। जां कै अचिंत वसै मन आए, ता को चिंता कतहु नाहे। जां

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एका टेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी।

सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर मित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करन हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवां संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां हर गुण जपत कमल परगासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कतह ना डोले जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार।

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत

नाराद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरण आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

नामो सिमरण की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा तारे सोजन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै।

गुरपुरा पीतिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुरमंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुर

पाई, गुर पूरे जब कृपा करी, भणत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर मोह।

नमाय। अमृत दृष्ट संच जीवाय, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

आओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आठाऊ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला कहो हौ बल जाऊं जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

के अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस पहो ना ही जिस नाम आधारा पहो ना व्यापै तेरी सरना जो तुद पावे सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना।

जंत विचारा गौड़ी महला पंजवा तुमरी कृपा ते जपिए नाऊ तुमरी कृपा ते दरगाह थाऊ तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ तुम मन बसे तो दुख न लागे तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी करूं अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जने ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिकम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रवतारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख करम दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पड़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाइह दिन राति, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर पर को वापारी पूरा, जिसे

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस सिंह आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लाग है कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने है स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लह तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कैर दै वसह भगवान औखद मंत्र तंत सब शार करने हार हृदय महतार ताज सब परम भजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल एहो धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरन सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पये सहाई मान मोह खोए गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाओ रोग

सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारी, कर कृपा प्रभ लय निवारी। ऐसा हर रस रमहु सब।

हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ हर के चरण हृदय उरतार भव सागर चढ़ उतरह पार साधु संग करहो सब कोई सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत भज गुणी निदान नानक दरगाह पाइए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हर मीत भ्रम बिन से गाए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तानेक साचे साकी मन मह टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट ना आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही डरपत डरपत जन्म बहुत।

कर पूजी सौदे को धावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवां सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचै साधरवाल गौड़ी महला पंजवां ऐसी प्रीत गोविंद सिउं लागी मेल लए पूर्ण वडभागी रहाउ परता पेख बिकसै ज्यों नारी त्यों हर जन जीवै नाम चितारी पूत पेख ज्यों जीवत माता ओत पोत जन हर सिउं राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल सिउं लागो मना बिसर नहीं एक तिल दातार नानक के प्रभ प्राण आधार गौड़ी महला पंजवां राम रसायन जो जन गीदे चरण कमल प्रेम भगती बीदे रहाओ आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप।

किल विख खोए। सिमर है साध कर है आनंद, मन तन रव्या परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, तां की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को रखनहार रहाउ। आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वड ताप। तिन मारिया जे रखे न कोय, आगे पाचे मंदी सोए। अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ। साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़। रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे। नानक शरण परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवा, जन की धूर मन मीठ खटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाउ। गौड़ी महला पंजवा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले। हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला। हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई। पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता। हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता। हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे। मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद। रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कारे आए। पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेतर पनीत पेखत ही दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीने आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए। आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम। सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु सरन दयाल। रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने। अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक कहो प्रभ कृपा तारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया। चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा। रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पहे सगल काम। दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव। अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते। कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई। गौड़ी महला पंजवा, पूज बल बीर ब्रह्म सुख सागर।
गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमख निमख बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भय केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाउ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिसह प्राप्त सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुर मुझे बतायो रहा जत कत देखो तत तत तुम ही।

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटे दिन सरे नारी मान गुर मिल काज सवारी रहाओ करूं बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला यह संसार विकार सहसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावहु सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवां राख पिता प्रभ मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच बखादी एक गरीबा राख हो राखन हारी खेद करह और बहुत संताव है आयु शरण तुहारी कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपहु गुर का शब्द कमाया जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपौ संग तुम्हारे बस्ते

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्स हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौ ता कह बलिहारी जा कह केवल नाम आधारी रहाओ महिमा ता की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ता कै चरण परों ता जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए इकतरा एक सकै वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द।

मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पांते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरे कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन भय ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावै तिस

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटै खिन पीतर। रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी। जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह। जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु। सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ। कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु। तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है। वड़े भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है। आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने। ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे। नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा। बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को। प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक। जी जंत की तुही टेक राज जोगन।

जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध सियान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई है रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जा को गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अग्न ते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिया एक नाम इहां सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिया तेरा अंगरोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुर दिया नानक ता का भौ गया गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रव है से गुणी गहीर रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर तन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग किरपा निध मैं दितनो।

हरी खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, शरण परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई रहाव, दीन दयाला पार ब्रह्म, जांकै सिमरन सुख पै, अकाल पुरख अगाध बोध, सुंत जसो कोट अग खै, कृपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लै, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाय रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाय, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाय, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराय, पहरै बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो होए कृपाल, ता सतगुर मेलै, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल

दर्शन को बलहरिय रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइय, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइय, मेरे मन नाम लए जम बंद ते शूट है, सर्व सुखा सुख पाइय, सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइय, नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सतगुरे अपने की, गुरते पाईए पाल, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवा।

सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो डंड धर हो।

नेरी नेरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ उही पियो उही कियो गुरह दियो दान कियो वाहु स्यो मन रातो उही पाठी उही पोचा उही प्यारो उही रूचा मन ओहो सुख जातो सहज खेल आनंद खेल रहे फेर पए मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आज्ञा बिकम पंत पै आन रहाओ सेवत सेवक सदा सेव तेरा संग बसत है काल कर सेवा तू साध की हो कातिया जमजाल होम जग तीर्थ किए बिच हों मैं बधे विकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकते आवह।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लोहो किस सोचो चितवो,

चेते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त भए। जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चल्यो तौ लो दान भरे, पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक भए। गौड़ी माला महला पंजवा, भावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस, मान गोबिंद आगियो रहाओ। मान अभमान दो समानी, मस्तक डार गुर पागियो। संपत हरख ना आपत दुखा, रंग ठाकुर लागियो। बास बासरी एक स्वामी, उद्यान दृष्टागियो। निरपौ भए संत भ्रम डारियो, पूर्ण सर्वागियो। जो किस करतै कारण कीनो, मन बुरो न लागियो। साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जागियो। जन नानक ओड़ तुहारी परियो।

गौड़ी माला महल्ला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सास्त सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउ कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किश इनह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांधा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किश आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ बरत नेम संयम मह रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडत बेद खोजंता जियो होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपो नाम त्याई जियो पहे कृपाल स्वामी मेरे जियो अथत पवित्र लग गुर के पैरे जियो प्रम पहु काट किए निरवैरे जियो गुर मन की आस पुराई जियो जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो सोभा वंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो जन नानक सहज समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माज आओ हमारे राम प्यारे जियो रैन दिनस सास सास चितारे जियो संत देव संदे

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन।

जोर तुम्हारा सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुनके चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहों चौहों क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रते परमेश्वर जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर ने

और साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थेहो घर हर के चरण निदान नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवां साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना पुस्तक निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यू

रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो। एहे विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग। देख तास उठ तावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी। मूर्ता ही बिसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा। साधु इहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है। याते थिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर। जेहे शुद्ध सब बिसराई

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमूलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम समावै गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सा

0: लुटै बवरा, अहल सौद कटै नहीं जानै, भयो लोभ संग होरा रहाव। जो तन तै अपनो कर मान्यु, हर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रत्न जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन भयो चरणन स्यो, बिरथा औद सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया, निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नौवा, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल भय भंजन, सरन ताहे तुम पर रे रहाव। वेद पुराण जास गुण गावत, तां को नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं, भव सागर कह पार उत्तर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया, महला पहला गौड़ी गुआर री। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद, निद सिद निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहया बिखमार। त्रिकुटी छूटी विमल मजार, गुर की मत जिए आई कार। इन बिद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ। एक सुख मानिया सहज मलाया, निर्मल बाणी भरम चुकाया। लाल पए सूहा रंग माया, नदर पई बिख थाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवे मन हर स्यों लागया। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया, पाए बसे जम का पौ भागया। साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यों राता हुक्म अपारा। जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा। तुझ बिन कोई न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत। किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हर नाए। सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज घर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति माहे सुमाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतुर सियाना, नह भूलो नह परम पुलाना। कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत सहज सुमाना। गौड़ी गुआर री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान। गुरु अंकस सच शब्द निशान, राज द्वार है सोभ सो मान। चतराई न चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ। कर मह अमृत तस्कर ले, नन्ना कार न कोई करे। राखै आप वड्याई दे, नील अनिल अग्न इक ठाई। जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा। सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन। न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन। जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया। देख बीचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई। तही निरंजन रहे समाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई। उस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत। नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआर री महला पहला। ना मन मरै न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय। मन मानै गुरते एक होय, निर्गुण राम गुणह वस होय।
1: आप निवार बिचारे सोए रहाओ।
0: मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

0: जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरा मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करे पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नरमेह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

क्यों सुख पावे परम पलानिया, एक तिल भूले बहोर पछतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म धीर जहर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाट पटंबर पैर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोल शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुलह सिर शत्र बनावो, बिन जगदीश कहा सच पावो, खान मुलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हौं मैं ममता गुर शब्द वसारी,

से अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिले सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मल धोई राव ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अगन जगत पर जार है सो उभरै गुर शब्द बीचार है।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, तत मत खोवे नाम वसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, तिसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हों हों करत नहीं सच पाई है, हों मैं जाए परम पद पाई है रहाओ, हों मैं कर राजे बहुतावे, हों मैं खपह जन्म मर आवे, हों मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चकावे, निरपो कै घर ताड़ी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हों मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी भरम भलाया, जो उपजै सो काल संघारिया।

मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाउ। अपियो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत वरोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ, गुरमत राम जपै जन पूरा। तित काट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार। से प्रभ राखे कृपा धार, जिनकै हिरदय हर हर सोई। तिनका दर्स परस सुख होई, सर्व जिया मैं एको रवे। मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे, सो बूझै जो सतगुर पाए। हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने। गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए। प्रभ हुए दयाल नानक जन करिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा। इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे रख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अध ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द ते

वरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरे सहजे पत पाई है अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

है अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए जिचर शब्द ना पी।

इह संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

जय अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दू जय पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संत।

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे

प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे हैं सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाने भरम ना जाए, बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिर कारा, नाम ना चेत है उपावन हारा, मर जम है फिर वारू वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपे जे को रखे छुपाए, ज्ञानी बूझे सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिवलाए, हौ मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूजै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुणतास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई, हुकम

तब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाईए गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जां शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला।

0: सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार,
1: त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार।
0: तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर ना कोए। सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मटाई। सदा आनंद हर नाम लिव लाई, गुर मिले हमको शरीर सुध पई। हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिनसे क्रोध खिमा गह लई। हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरमुख रतन को बिरला लेवे। नानक गुण गावे हर अलख अपीवे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन। अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन। हर हर राखो कृपा तार, सत संगत मिलाए प्रभ। हर हृदय हर गुणसार रहाओ, से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन। आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार, ओह क्यों मनो विसारी है। हर रखिए हृदय धार, नाम मिले है पत पाई है। नाम मन्ने है सुख होए, सतगुर ते नाम पाई है। कर्म मिले प्रभ सोए, सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन। तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन। एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए, जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए। सतगुर सेवन सो सोहणे हउमै मैल गवाए, शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए। हर प्रभ दाता एक तू, तू आपे बख्श मलाए। जन नानक शरणागती ज्यों भावै तिवें छडाए। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए, गुर भाग पूरै पाया गल मिलिया प्यारा आए। मन करहला सतगुर पुरख।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हो मैं आई प्रतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर पाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहु मन में करत गुमाना तब इहु बावर फिरत बेगाना जब इहु हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहु जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह होमै भागे, जास जपत वस आवह पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै हुई प्रगास।

सहजे भोजन सहजे भाव सहजे मिट्यो सगल दुराव सहजे हुआ साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग सहजे ग्रह में सहज उदासी सहजे दुबदा तन की नासी जाके सह

ज्ञान सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया ता कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास ता कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करै गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिन सजाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परै कोट कर्म जाप तप करै इस मारी बिन जन्म ना मिटै इस मारी बिन जमते नहीं छुटै इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरै ता सबको मीत हर स्यों जुरै ता निश्चल चीत हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरै ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते भिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

जाकै काम ना जो है दूत, जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम होवै तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जा

भांत जाकी दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे कर की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवां बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसुआ पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ट फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवां गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

बाणी। गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निधर। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिसकी कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

था। गौड़ी महल्ला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेह।

अरुण करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे

पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसे ही नाही हर पूर पंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हुमै गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उठायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवां रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करहु।

कापड़ तन ना सुहाई। कापर तन सुहावै जां फिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइयै। गुर शब्दै मेला तां फिर रावी, लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमें मारे इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामना हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हम मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यों मिले तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोह लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाई प्यारी। रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाओ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इयों मरिए। खिन मह राम नाम किलविख काटे, पये पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पये मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे। जो आया सो सब को जासी, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरे कुल तारे। नानक नाम वसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वापारा। राम नाम वापारा अगम अपारा, गुरमती धन पाईए।
सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अब गुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पै, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामन, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वादाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है कर्म है, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महल

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझै त्यावहि कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्स प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपह निधाना जम काल किनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन सिरी तहर चरण कमल अराधिए जम पंत बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिए कल मलै दहता शुद्ध करता दिन सरैन अराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किस है काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरन पै नरक निवारे
पनीत करै तिस जनते। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए। सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंदह गाइए। कल कलेश मिटह भ्रम नासह, मन चिंदिया फल पाइए। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम त्याइए। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्स बैरागण, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया। सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा। गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल, कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपह किया कराया, आपह करमै जोग। नानक एको रब रहया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कार, आदि मद अंत निरंकार। आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन। आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो। आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए।

का सेई सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेहे संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक तां कै सद बलिहारा सलोक धन धन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहुने नानका होत जात सब धूर पवड़ी तद्दा धूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछै सुरजना आछै अत प्रिय प्रीत साध रज राचै धंधे कहा व्यापह ताहू जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मह एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या भिन्ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो नफासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत तमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रात

एकह आप अवर नह हो होवन हार होत सदे आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

सर या भवजल करना यया जन्म न आवे सो एक नाम ले मन है परो यया जन्म न हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जां कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के नीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीआं ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खात शास्त्र हो ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म कीर्त की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार ना भूलन हारा काहू पंथ दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेलह बिगसह आनंद स्यों।

दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करहु भगवंता, शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूल है कनो, काची दे विकार, हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी, जज्जा जाना हो कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ, जो जाना हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाना मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हों मैं मारी, नानक ता को मिले मरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारह तुझै ना व्यापई, नानक मिटै अपाद पौड़ी, चज्जा चूरन मिटै तुमारू, राम नाम स्यो कर व्यवहारू, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कैरिदै होत पाओ बिया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत पवड़ी, जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एह हेत, गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग, ज्ञान तो सोई संत सोए, प्रमते की चत पिन, अंध कूप ते ते कड्डो, जे हो वो सो परसन, ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग, नानक ते उस्तत करो, याहू कियो संजोग। सलोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरे, गुण निद गोविंद राय पौड़ी, टहल करहो तो एक की, जाते बिरथा ना कोय, मन फन मुख ही है बसे, जो चाहो सो होए, टहल मैल ता को मिले, जा को साध कृपाल, साधु संगत तो बसे, जो आपन होहे दयाल, तोहे ताहे बहु पवन, बिन

टेक आधार रैण दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर येऊ कर्म कमाय हुक्म बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावे मोहे नानक भ्रम पहु काटी है चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निद गोबिंद राय फल पावह मन बांसते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुई परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चले ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपाले नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था थिर को नहीं काए पसारू पाम अनक बंच बल छल करो माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करो थाक पर हो गवार मन कै कामना आवई अंते अवसर बार हित पाव हो गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ देवन हार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार पौड़ी दद्दा दाता एक है सबको देवन हार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा।

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी तज अवमान छुट्टै तेरी बाकी रण दरग है तो सी जय भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाओ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुर पूरे बिन बिद ना बनाई गुर पूरे संयम कर दिया नानक तौ फिर दुख ना थिया। श्लोक वासुदेव सर्वत्र मैं ऊन ना कतहू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर ना करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरलै ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुगद अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे ओरे दमाही वा की डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मटाई निमख माही नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेह मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी सस्सा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारी तुम समरत अगणत अपारी शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख भये

जो किन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौहो कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जह महाप्यान दूत जम दलै। तह केवल नाम संग तेरे चलै, जह मुश्किल होवे अत भारी। हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै। हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख ना बुझावै। हर का नाम जपत आघावै, जिह मार्ग इहो जात अकेला। तह हर नाम संग होत सहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याईऐ। नानक गुरमुख परम गत पाईऐ, छूटत नहीं कोट लख बाही। नाम जपत तह पार पराही, अनक बिगन जह आए संघारै। हर का नाम तत्काल उधारै।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात इहो हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब लसै। संत का संग बड़ पागी पाईय, संत की सेवा नाम ते आईय। नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

अपमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट सा

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझ प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता।

पहले अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रतीत आप ही खोए, बहुर उसका विश्वास ना होवे, जिसकी बसत तिसे आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माते, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक

हार लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सब।

मिथ्यारथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेक्त पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धावह मिथ्या

जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदे

सब कछ जाने आत्म की रहस्य, जिस पावे तिस लय लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाई, सो सेवक

मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै नानक पात से।

का ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप।

ऐसा प्रभ त्याग अब रकत लागु हो, गुर प्रसाद नानक मन जागु हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल।

मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ नानक इनके कछु

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा प्रफुल्ले साध कै संग आवह बस पंचा साध संग

अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावे साध संग अस्थित मन पावे साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधक्या संग नाही हो ताप, साधक्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बगाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहू तावे, साधक्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक्या संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग महल पहुंचै, साधक्या संग निर्ढह सब धर्म, साधक्या संग केवल पार ब्रह्म, साधक्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक्या संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस

पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म में शोध राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जोन

ना पाईए धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

जित जित घर राखे तैसा तिन नाउ आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन होग पसरियो आप होए अनंत तरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग।

कार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसो।

जल थल मही अल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग, जोत पावै सोई होग। हिन मह थाप उथाप नहारा, अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म सुमावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इस काबल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्म

बड़ राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

आज्ञा सुख पावे, हनुमंता हुई कर कर बावे, त्रिण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, हिन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

हरि हनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार हनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहो कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह भला।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

ओठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हार।

न जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान थनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत के।

अष्टपदी संत कै दुख ने आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमा।

ज्ञान प्रमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर तेज होता जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किस नाहे आपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को अवरना राखन हार नानक संत भावे ता लए उभार। संत का दुखी इयों बिन लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै

नानक जो तिस पाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगह नानकी उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना

नह किस मरै आपन चलते आप ही करै आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड धारन धार रहो ब्रह्मांड अलख

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

है, प्रभु की जोत सगल घट सो है, तनमंता हुए क्या को गर्भ है, जहाँ सब किस किसका दिया दर्भ है, हत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहतावे, जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद तू कह हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, ज्यो मंदर को थम थमन, त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़तर, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रव देवन हार, अवर त्याग तो तिसह चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले हो।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे।

पाए, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत विचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभु कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

के जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत, जिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, ई अमृत इहु मन तन त्रपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाउ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कह आप नहीं कछ भरम सहस सियान पलया ना जाइए नानक ऐसा गुरबद भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करन आगहने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लये मलाए जिहवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जां कै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग ना लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चूका निरपौ होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी साध संग जप नाम मरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करन कारण सो प्रव समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत यह तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठ धावह तो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बोध हो हर कह नाए दह

परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देव हो हर नाम। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने,

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाए तरिय संसार बिन

एक दर्श सुख हुए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै करमया।

अष्टपदी जब अकार एहु कसना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत।

नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आपरतियो प्रपंच अकार, तेहों गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई।

भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुह पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुले ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्थार जान तिस भावे ता सृष्टि अपाई अपने भाणे लई समाई तुम ते

नानक फल पावहु, हलत पलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जपो निवलाई, दुख दर्द मन ते भउ जाई।

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमर।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ

नानक तिह जन सोजी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहिया भगवंत, तरन माहे आकाश पायाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल, पांतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी वै संतर वाहे, चार कुंट दैद से समाहे, तिसते भिन नहीं को ठाव, गुर प्रसाद नानक सुख पाव, वेद प्राण सिमरत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मै एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्व कला कर खिले खेल, मोल न पाइय गुण है अमोल,

किने कछ करा आप भला करतूत आत्मी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख होए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वोह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

द्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् काबेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग

गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे, जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै

सुख जाते सब कछु होए चार कुंट दह दिस भ्रमयो तिस बिन अवर ना कोई वेद पुराण सिमरत सुने बहु विद करो विचार पतत उदारन पै हरन सुख सागर निरंकार दाता भुगता देन हार तिस बिन अवर ना जाय जो चाह है सोई मिले नानक हर गुण गाय गोविंद जस गाय हर नीत

हर शरण परों हर राय, भ्रम कटिए नानक साध संग, दुतिया भाव मिटाए पौड़ी, दुतिया दुर्मत दूर कर, गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसे, अज काम क्रोध लोभ मीत, मरण मिटे जीवन मिले, बिन सह सगल कलेश, आप तजोहो गोबिंद भजोहो, पाओ भगत प्रवेश, लाभ मिले तोटा हिरे, हर दरगाह पतवंत, राम नाम धन संचवे, साच साहा भगवंत, उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई,

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रमतो कणो, सदा संगारै नीच, हरख सो

परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथया बलबंच नह जापै नह बूझिऐ नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारा वार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

कार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बासकार सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन वेद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट।

नाम पौड़ी 14 चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई

हों मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, तरन गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण गो

आया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

मनमुख अहंकार सलाहंदे हम मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

जय मन पहाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू बड़ी है। तुद जे वड होए सो आखी है तुद जेहा तू है पढ़ी है। तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी है। तू सच्चा सब सुदा खसम है सब दू तू चढ़ी है। तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम।

लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे। जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे। फिर ओह वेला ओ सहत न आवे। ओह अपना बीजिया आपे खावे। नरक भोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे। फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे। जहां हर हर नाम त्यावे हर बात आख।

तुलिया सेवड भागी जे तुद त्याई दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणिया सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

हो हाथ पाए, आखे हू से तीरल गया। जे गुर की सरनी फिर ओहो आवे, ता पिछले औगण बख्श लया। जन नानक अन दिन नाम ते आया, हर सिमरत किल विक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान। जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान। उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया, सच

सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वडियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए। डरियै तां जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए। देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए। अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए। सतगुरु की वडियाई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए। अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए। गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे। तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे। नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया। नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

तू जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका, मुह फिके थुक थुक मुहे पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल भूसे खाही, जिन गुर गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही, तिनकी भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कुकाही, उना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी, उना अगे पिछे थाऊ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह, रहंदी खुंदी सब पत गुआही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करहो, जो दूजे पाए चित लाही, तुर करते आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही, नावै की वड़ियाई वड़ी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही, महला चौथा गेहों दे गुरु बह टिकिया, तिस जन की वड़ियाई वड़ी होई, तिस को जगत निमया सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई, तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह, जिसके मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै, सो पूरा होई, गुर की वड़ियाई नित चढ़ै सवाई, अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करतै आप वह टिकिया।

हृदय है जिन हर बसिया मन माहे हर दर गहति मुख उज्जले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको धुर लिखिया आहे ते हर दरग है पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरिया।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छडाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भावसी।

सिख मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

क्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

उठा। सत संगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश करह पर उपकारिया।

मंदे शब्द लगावन हार जन नानक जिन को कृपा पई तिन सेवया सिरजन हार पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादया सच साहेब सच जिनी सेवया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सच रलादया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाय बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाय हर प्रभ आप दयाल होहि ता सतगुर मिलिया।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ, ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणतै कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर पुरख निरवै।

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

आपणी आपे पछताणी अज राइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। सलोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवा नारायण नया न ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पचमोआ विच देही पखे। सच्चै साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागती जो पुरख अलखे। सलोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवा अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे आप भलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरै सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंदेसे मिट गए जम का भौ छुट काम क्रोध बुरियाइयां।

काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौजदी की वार की धुन उपर गावण।

तिसके मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लाव ग्रह तन सब पवित्र हुए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पा।

नानक नाल न चलनी, जल बल होए शार पौड़ी, से ही उबरे जग विच जो सच्चा रखे, मोहे डिठे तिन कै जीविए, हर अमृत चखे, काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे, कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे, नानक चलत न जापनी को सकै न लखे। श्लोक महला पंजवा, नानक सोई दिन सो सुहावड़ा, जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म, हित पलेरी रुत महला पंजवा, नानक मित्राई तिस सिउ, सब किस जिस कै हाथ, कमित्रा से कांडी है, एक विख ना चल है साथ पौड़ी, अमृत नाम निदान है, मिलती वो पाई, जिस सिमरत सुख पाई है, सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भुख रह ना काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म, नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा, डिठड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए, नानक लद्दा तिन सो आओ, जिन्ना सतगुरु भेटिया। महला पंजवा, दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे, वथ सुहावी साए, नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी, सिमरत शास्त्र सोध सब किन कीम ना जानी, जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख एहे रतना खाणी, मस्तक होवै लिखिया

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा। श्लोक महला पंजवा। कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा। बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी। एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी भव सागर संसार बिख सो पार उतरी हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी। श्लोक महला पंजवा। नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्तिऐ नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खटै जिन हर धन राह।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिए त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म। एक नाम त्यावो।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उतरै मित्ता हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतो की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

कबीर जी नगन फिरत जो पाईऐ जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति भेद न गई आकाई बिंद राख जो तरिय पाई खुसरे क्यों ना परम गत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौड़ी कबीर जी संध्या प्रांत इशनान कराही ज्यों पाए दादुर पानी माही जो पै राम राम रत नाही ते सब

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ। पर हर लोभ अर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। रहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए रहा। जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सू।

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस जंती मह

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग

तौ की जय जौ आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलो है जे आवन हारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाव। सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया कांसी, मरन भया मगहर की बासी। कांसी मगहर

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाऊ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावूं खोजत तन मह ठौर ना पावूं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके

जब लग रथ तब लग नहीं नेह रहाउ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन तन गृह।

लाभ चौड़ कथ बोड़ी हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकस्यो नीर तो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना भई महतारी जेहे नर राम भगत नह साधी जनमत कसना मूह अपराधी रहाव मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

तिनकै सद बलिहारै जाउ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाउ। जेहे कट राम रहया परपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाऊ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह दयापी मनह मार कमन सिद्ध थापी कमन सो मन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाओ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भगत ना हुई।

बूज बूजनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामे होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै पांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझह ले तारू हिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

राखै कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

तस माया कैसे जीवन हुए हमारा जब ना हुए राम नाम अधारा रहाऊ कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन गौरी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांध तपाग सो सिर चुंच सवार है काग इस तन तन को क्या

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारी।

सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया, अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाऊ, साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई, अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना।

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाउ काम क्रोध दोए भये जगाती मन

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

हर की चरणी लाग रहो। ताज सरण कबीरा गौड़ी जोगी कह जोग पाल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक शब्दी ए कह सिद पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु।

कहे बद हम ही जिसे बुझाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिना।

हाल खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिय तोल ना तुलिये पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस।

नतर रही उरझाई, छोड़ पसार इहां रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली, किंबा हुए मोहोए, जित घट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो हे रहाओ, साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

विखै बाच हर्राच समझ मन बहुरारी निरपै हुए ना हर भजे मन बहुरारी गहयो ना राम जहाज रहाउ मरकट मुष्टि अनाज की मन बहुरारी लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परिया मन बहुरारी नाच्यो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बहुरारी माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बहुरारी त्यों पसरियो पासार नामन को तीर्थ कने मन बहुरारे पूजन को बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बहुरारे छूटन हर की सेव गौड़ी अगना दह पवन नहीं मगन तस कर नीर न आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कहिए जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लहिए रहाउ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो रहाओ ज्यो उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुरु ओट लयो।

माया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हूं लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ जां तिस पावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तौ जठर अग्न मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी है।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान।

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बडभागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सनमुख रनते डरपै, सती के सांचे पांडे डगमग छाड रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम।

चार गौड़ी लख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लोरे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप न

जास गुण गाव है तास बस है मूरे प्राणा न रहाउ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विख रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो एक है एक समाना ना कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन माना ना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहू कहू ता को पकार भटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कछ कछ पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जा

कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा, खोड़े शाड ना दह दिस तावा, खसम जान खिमा कर रह, तो हुए निखियो अखै।

आई कग्गा काट काट निमसै सोई काट फूटे काट कबह ना होई ता काट माहे काट जो पावा सो काट छाड अब कट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम सियानप एह चचा रचत चित्र है भारी तज चित्रै चेतो चितकारी चित्र बचित्र एह अवचेरा तज चित्रै चित्राख चितेरा छछा एह शत्रपत पासा छक के ना रहो छाड के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे छाड कत आप बंधावा।

अर्दह उर्दह मंज बसेरा अर्दह चाड उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यों परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी पप्पा बिन फूले फल हुई

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, एह रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अंत न जाए।

होवे, एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो, घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ, पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा, तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सुवारै, सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा, तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लखै जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत फिर

गए केते खिरत खपत अजहू नह चेते अब जग जान जो मना रह जह का बिछरा तह थिर लह बावन अखर जोरे आन सक्या ना अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सुअन पै रह पंडित लोगहा को व्यवहार ज्ञानवंत को तत विचार जा कै जी जैसी बुद्ध होई।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज प्रगास। आदि अंत मद हुए रहे आथीर सुख सागर में।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ। अहनिस अखंड सुर ही जाय, तो अनहद बीन सहज महबाय। सोमवार सस अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

नाही, हैनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यों लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोए, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभै जान, रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले कर्ण बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन कौराज दी।

जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

साध कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

और मोसौ को न कह समझाई, जाते आवा गमन बिलाय रहाव। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब नोए। कवन कर्म ते छूटी है, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, संका सुन वेद पुराण। संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार। शुद्ध कवन पर्व होए बो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार। पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट। हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह।

पंडित पढ़े रिथीश्वर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो।

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एक

दात जिन दिन करकै कीती रात खसम वसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावै धीरक भावै धक्के।

करी गुरु प्रसाद वसे मन आई दुख अनेरा विचों जाई साच प्यारा आप करी अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचे कल का पाव जति सती कह राखह पाव नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बीना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जां सहो मिलिया ता जानिया तिहों लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाय दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव पाए।

भेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाहन।

जाय नानक अस्थिर नाम रजाय आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासे परमल रूप पूजल मोती चूग हंस सर्व कला जगदीश अंश जो दिसे सो उपजे बिनसे बिन जल सरवर कमल ना दिसे रहाओ बिरला बूजे पावे भेद साखा तीन कह नित भेद नाद बिंद की सुरत समाय सतगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा बिकसंतो जिस तू राख है कृपा तार बूढ़त पाहन तार है तार त्रिभवन मह जोत त्रिभवन मह जानिया उल्ट पई घर घर मह आनिया अहनस भगत करे निबलाए नानक तिनकै लागे पाए आसा महला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर बहुत सियाणप लागे धूर लागी मैल मिटे सच नाई गुर प्रसाद रह लिव लाई है हजूर हाजिर अरदास दुख सुख साच करते प्रभ पास रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे कहन कथन वारा नहीं आवे क्या देखा सूझ बूझ ना पावे बिन नावे मन तृप्त ना आवे जो जन्मे से रोग व्यापे हम माया दुख संतापे से जन बाचे जो प्रभ राखे सतगुर सेव अमृत रस चाखे चल तो मन राखे अमृत चाखे सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे साचे शब्द मुक्त गत पाई नानक विचों।

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ताके सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

एक धरन गगन में ठौर ना पाव है, से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है, गुरपुरे ते गत मित पाई, एहो संसार बेख वत अत भौजल।

प्रगट जाई, सच निशान ठाक न पाई। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत ना जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसम रास भई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रहै समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हठ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेव हो जो उपजै सो अलख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवै नानक राम नाम मन भावै आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी तां पर उपकारी जां पंच रासी तां तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे सह भावा।

पछाणिया सहज सुभाई अपना पिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक तै भाव का करे सिंगार सद ही सेजै रवै पतार।

पहला द्रौपदे तित सरवरड पहले नवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पहला।

इस एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवै ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग धंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिए है लख संजिए है खाज है लख आव है लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को परवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार अहनस हृदय जी वसे नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को पकड़ पाए।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन ता फीए जा एनस लागे भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू न खूटस नाहे। आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर ना रहे जैसे भवह उदासे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रु

साद आसा कर सीमा महला पहला मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत तारी खिमा सिंगार कामन।

हाँ, हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किश करे भला कर मानू सहज जोग निद पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत मह जोगन अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी मह आसन बैसो कल्प त्यागी बादम सिंह शब्द सदा धुन सोह एनस पूरे नादम।

कली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुण कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाईए पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अमियो चुआईए बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जाको नदर करे अमृत का वापारी होवे क्या मद सूचे पाहु धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई रतन वगार वगोए कुत्ती मोया सार ना काई आपे जोड़ वछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दानी मर मर जीवे तां किस पाई नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडभाग गुर कै शब्द सच्चे बैराग खट दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत हुए साचा आप।

कोई गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा शब्द मुआ विचों आप गवाए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

साचै शब्द समाहे सेवड़ भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार जाऊं दर साचै साचे गुण गाऊं आपे देवै सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई श्री वछुने मेल मलाई आपे मेले मेल मलाई अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊंचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विणनावे दुख दर्द शरीर सतगुर भेटे ता उतरै पीर बिन गुर भेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गत पाए आसा महला तीजा मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर सेवत ही सुख शांत शरीर शब्द तरे जन सहज सुपाए किनकै हम सद लागह पाए जो मन राते हर रंग लाए तिनका जन्म मरण दुख लाथा ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाउ शब्द चाखै साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर प्रभ सदा रहे।

आई गुर प्रसाद वसे मन आई गुरमुख विचों आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए हत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारन हार हासा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरता जन्म गवाया सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाई, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम वजाई, नानक महल शब्द कर पाई, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मन मुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूणी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटां खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाई, गर्भ जोन विष्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हौ मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गो

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाई। गुर कै पै साचै साच समाए बिन गुर पूरे भगत ना होए। मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा आनंद।

घबर ना कोई। गुरसागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाण।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरै गुर प्रसादी भवजल तरै गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियों चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस जुग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणे जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणे सलाहियै भाणे मन्ने सुख होई हर कै भाणे जन्म पदार्थ।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़ीए।

अंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाऊ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लाभ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पालै घुंगरू ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागै हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेलै पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिल है मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भाव है जिनकी पत पाव है थाए नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आख है त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा आया मन तुराहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समानिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन आज के काल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सतियार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई अन दिन नाम त्याए हर गुण गाई है अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन परगास सच्चा पाई है राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं सतगुरु मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों

उपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। असावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई। हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ। हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख सरन जगदीश सुर प्यारी, मोहे शरदा पूर हर गुसाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरही तिन हुए ना आपै, एक सती कहावै है तिन बहुत कल पावै। हम हर राखे लग सतगुरु पावै, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सबाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुर राखे दे।

समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, साहा व्यापारी द्वारे आए, वक्र काढ हो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास,

समाना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एह लोग अजाना रहाव सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सुबा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलू।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाय तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाय रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकरे निश्चल साधु पाए सहज धुन गावे मंगल मनुआ अब ता को फुन काल ना खाए करन कारण समरथ हमारी।

तीनवा पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचक्षण

मरना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाउ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर होएगी।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रहे कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी, रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी। जन नानक को

महान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाउ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाउ तोट न आवे नखोट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी।

कहो नानक गुण गाइयह नीत, मुख उजल हुए निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौ निद तेरह।

नामन रोवन हारा अवनासी अवगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा रहाऊ तेरे दासरे को किसकी कान जिसकी मीरा राख आन जो लौडा प्रभ किया अजात किस

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की भरपुर धार।

गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बंधावे।

रहाउ। त्रिपत अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय, सब मैं जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास भई मत पूरी, तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़त कोर अंधकूप में है।

गुर पूरै प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप काश उकत ना मोरी, गुर नानक सरनागत तोरी।

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो शेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु हाट समाए, लाख करोरी मिले ना कहे।

याद ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीता हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटकै दुर्मते अपनी धारी होए नमाणी सेव कमावे ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

की ब्योहारा आज्ञामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा कित ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

ओ चित कछु ना लागे, चरण कमल सरनाई, संत प्रसाद भई कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाई, आसा महला पंजवां, औखद खायो हर को नाउ, सुख पाए दुख बिनसिया थाउ, ताप गया बचन गुर पूरे, आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ, जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवां, बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों

सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे है किलविख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुऐ हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बह आनी। आगे दरगह काम ना आवै छोड़ चले अभमानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत।

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन ला।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रवाब पखावज ताल घुंगरू अनहद।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारी औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइय।

मुक्त पय अंधकूप महा कोरते बाहा पकड़ गुर काड लिए निरपव पय सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचरज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहू विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां, जहां पठाव हो तह तह जाई,

उठत बैठत सोवत त्याय मार्ग चलत हरे हर गाइय श्रवन सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन हुए आनंदा दुख रोग मन सगले लथा रहा कार्ज काम बाट घाट जपीज गुर प्रसाद हर अम

पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की तूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस पेटे जिस तुर संयोग मन आनंद मंत्र गुर दिया तृष्ण बुझी मन निश्चल थिया नाम पदार्थ नौ निद सिद्ध

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा, प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे। बिना

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही

ओट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत पहे दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा राख।

है मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवां, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोहो सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम।

क्रोवन हार झूठ कमाना हस हस सोग करत बेगाना को मुआ काके घर गावन को रोवे को हस हस पावन रहाव बाल व्यवस्था ते बिरधाना पहुंचना मूका फिर पछताना त्रिहु गुण मह वरतै संसारा नरक सुर्ग फिर अवतारा कहो।

जानी पोर पया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा तांते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे भरम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आसा महला पंजवा चरण कमल की आस प्यारी।

आनंदन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप मह खाए मठाई सोचत साचत रहन बयानी अनकरंग माया के चितवत कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया काल कै फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सो थान मूड निश्चल कर पा।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै। ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ। उनकै संग तू ग्रह महिमा हर, उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मान महत,

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो दिन सरहन, ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद। साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा। प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

संबाहा निकसया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे पचे

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिलिया तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुट्टो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गुआई निर्गुण मिलियो बजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी दीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोडह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा मोहल्ला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग काटन हा।

सगल धर्म हर के गुण गाम। महा पवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकी गात मित कहन ना जावे रहाउ, वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनी।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे तां कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै

बाहां पकड़ हम राखा, आसा मोहल्ला पंजवां, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, इहां उहां कामना प्राणी, संत तृप्ता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाव साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जांकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाव जांका दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जांकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जांकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहूं जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी।

बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे वड्डे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला।

सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैण पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

पंजवां लाख भगत आराध है जपते पियो पियो कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाओ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

साहा साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यों पावे त्यों राख राखण हारिया तुझ बिने अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है।

जानिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरी है नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है आसा महला पंजवा क्या सोवह नाम विसार गाफल गहले।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रहन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसे सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुणी उत्तमो भरता दूर ना पेखरी एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाण पचातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाएरी दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

हम शूटे अब उना ते होए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते।

सर्व सुख पावो आज्ञा पावो के ना पावो। एक दतार सगल है जाचक, दूसर कै पह जावो। हों मांगो आनल जावो, सगल शत्रपत एको ठाकुर। कौन समसर लावो रहाओ, उठो बैसो रह पे ना साको। दर्शन खोज खजावो, ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार। तिनको महल दुल पावो, अगम अगम अगाध बोध। कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सत पुरख की। सत गुर पुरख त्यावो, पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर। काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पायो। तो फिर

मार्ग पंथ सुमारी, नाम दृढ़ गुरमन मह दिया, मोरी तिसा बुझारी, दिन पी गावो रहनी गावो, गावो सास सास रसनारी, सत संगत में बसास हुए, हर जीवत मर्त संगारी, जन नानक को एहो दान देहो प्रभ, पावो संतरेन उरतारी, श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवा, जिसनो तू अस्थर कर मन है, ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी, सब मिथ्या असनाहा, रे मन क्या करह है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी, एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे बस्तर देह ओढ़ाने, दिन दोए चार पुराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है, अंत ओर को आहा, जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा, आव गया गया पार ब्रह्म की,

गंदन वहन सुने उर्जावह, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यों रुच नहीं आवै, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अरजादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाते, बहुर बहुर जनमाते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यामो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, निमक काम स्वाद कारण, कोट दिन से दुख पावे है, करी मुहूर्त रंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है, अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तुमर, जैसा संग बिसियर स्यों है।

सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उभरियो जिस गुरु पूरा कहो नानक भव सागर तरियो पये पनीत शरीरा आसा महला पंजवा दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ मूड मुग्ध मुकरानी आप कमाने कौले बांदे फिर पाछे पछतानी प्रभ मेरे सब विद आगे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित तित लागे।

सकै सारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर, सुखै नाही परवेश सारी। साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाय, एहो जन्म पदार्थ जीतारी। रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो हो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारे, तत नानक एहो जाना रे। सिमरत नाम निदान निर्मोलक, मन मानक पथियाना रे। आसा महला पंजवां दुपदे, गुर प्रसाद मेरा मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे। हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रैन दिन सतिस

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना के

मोहला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग

महा पौजल लंगी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग।

महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास त्याय

आनपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से परगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईए सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हों।

लाग ओहो नेहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रह रहाओ जो प्रभ भावे जन्म ना आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे प्रभ संगम लीजे एहो मन दीजे नानक नाम मिले।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेख ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्याव भ्रम भीत जीत मटाव निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

तिस पुखान हा नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुणी हा जपिए सहज धुनी हा साधु रसन पनी हा छूटन बेद सुनी हा पाइए वड पुनी मेरे मना रहाओ खोज है जन मुनी हा सर्ब का प्रवतनी हा दलाब काल धुनी हा दूख बनासनी हा प्रभ पूर्ण आसनी मेरे मना मानसो सेवी है हां

कहूं कौन सियो मन की लोभ ग्रसयो दस हूं दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावे बकै न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत झोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावे सतगुर शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे पारस परस परम पद पावे सच मन कारण तत् बलोवे सुपार सरवर मैल ना धोवे जैस्यो राता तैसो होवे आपे करता करे सो होवे गुर हेव सीतल अगन बुझावे सेवा सुरत बेभूत चढ़ावे।

संभाल, गुर सुख दाता अवर ना भाल, हलत पलत निबही तुद नाल, शब्द मरे ता एक लिव नाई, अचार चरे ता भरम चुकाई, जीवन मुक्त मन नाम वसाई, गुरमुख होए ता सच समाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौं बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आप निर

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता मीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

या लह संधान जिस कायन तन सहज ना जाना परम भुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह सीरा, लाभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

अपने वस किए हउमे ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की।

0: दुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

संसार सच ना पाया, क्या भवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया, रहाऊ सच मिले सच्चाई।

बख्शनहार शब्द कमावही। नानक मंगै सच गुरमुख कालिया, मैं तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहाली है। आसा मोहल्ला पहला, क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं घर बन हरियावला सच टिकै घर आए।

कर्ण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाउ आवन जावन तौ रह पाइय गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आद पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखी है उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सोजने गुर शब्द विचारा ज्यों अंदले हाथ टोहने।

देवन वाला सब बिद जाने, गुरमुख पाइए नाम निदान रहाउ। सतगुरु भेटे की वडियाई, जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई, सहजे माता हर गुण गाई।

जाई सोई। सतगुर नाम बुझाया बिन नामै भुख ना जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई। रहाउ कल की

जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए होमे मार, हर जपिए पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वड्याई, एको नाम चेत मेरे भाई जग

नामे ही सुख उपजै, नामे सरनाई, बिन नामे कोई ना मनिए, मनमुख पथ गुआई, जमपुर बद्दे मारिय है, बिरथा जन्म गुआई, नामे की सब सेवा करे, गुरमुख नाम बुझाई, नाम हो ही नाम मनिए, नामे वडियाई, जिसनो देवै तिस मिले, गुरमती नाम बुझाई, नानक सा

नानिवह दूजा भाऊ सुआव इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब रहाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पत शब्दे होए बिन नावे सब नीच जात है विष्टा का कीड़ा होए हों हों कर दी सब फिरे बिन शब्द हों ना जाय नानक नाम रते तिन हों मैं।

है बहुविध श्रिष्ट उपाई हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार इकना बख्शे है मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए हस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाओ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया।

भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार आनंद निरावे फेरे आपना सच रखे उरतार जिन्ना फिर रावया आपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजली फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनाह बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट साहा व्यापारी एकै थाट जे जिया दन को लय ना जगात सतगुर कर दीनी तुर की छाप वखर नाम लद खेप चलावो लै लाहा गुरमुख घर आवो सतगुर साहु सिख बणजारी पूंजी नाम लेखा साच संवारे सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव अब चल नगरी नानक देव असावरी महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाउ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मुरार मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग जेते माया रंग रस बिनस जाहे खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाए सब जग चल तो पेखी निहचलार को नाम कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाव मीत साजन सुत बंद पा को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यों नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावै सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाई, जो तू कराव है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाई। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई, एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक हर सरनाई। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया। सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया।

आद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हम मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवण जावण थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हों जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰਨਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ।

खाहे चूटा शब्द बिन बेतालिया सच कह नानक चेत रे मन मरह पवरा कालिया मेरे जीअड़िया परदेसिया कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की फासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिउ छोड़ मनु अंदेसिया सच कह नानक चेतरे मन जीअड़िया परदेसिया नदियां वहा विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाण सत गुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगध अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा।

तू बैराग कर किस दिखावे है, हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे है। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई, गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा, सोई सर्व सुख पा।

गुरमति रंग मान मूल पछाण है ता सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई मन शांत आई बजी बधाई।

बसाए, सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया, अनहद धुन वाजे है नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाता, ज्योति ज्योत समाणी, मन मुखा मन मुख मुए, मेरी कर माया राम, खिन आवे खिन जावे, दुर्गंध मड़े चित लाया राम, लाया दुर्गंध मड़े चित लागा, ज्यों रंग कसुंब दिखाया, खिन पूरब खिन पच्छम शाए, ज्यों चाक कुम्हार पवाया, दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोगे हैं, दुख की बिरद वधाई, नानक बिकम सहेला तरिए, जाया वै गुर सरनाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया, राम गुर परचै त्याया,

ना आवे। नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मलावे। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम। मन तने अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु।

मुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए दियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हौ मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए।

आप हैं जग पुन आरंभ हैं। अत किरिया कर्म कमाए दियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए दियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव हैं खिन खिन पग धोवे हैं। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कढ लेवो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

मुख मस्तक पाग सुभागा जन नानक हर कृपा तहारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु कड लेव हो शब्द सुपाए जियो आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुकत सुख होई जीवन मरन हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रस गटाक पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरन ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकरे ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको एहो जी अड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जै हर वस्त लड़ी जै जिसकी वसत सो ले जाए जियो मन मुख करन पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वसत प्रभ लए स्वामी जन उभरे शब्द कमाए जियो जग मरन ना पाया नित आप लकाया मत जम पकरे ले जाए जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगाह पैंदे जान जियो हर दरगाह पैंदे हर नामे सीते हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवें दुख मेटे हर रामे नाम सुमाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बहुड़ मरना होई हर हर नाम अमर पद पाया।

जियो जग उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तां की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

गोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावह सब तेरै शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरै शब्द वडियाई। गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ शब्दे रहिया समाई। तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ नानक नाम समाए जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जाप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

रस भिन्नी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मनी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बनज है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावै पांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडार।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराई। कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर,

गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिने अंतर हर हर प्रीत है। ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हूं भुल चुक बोल दे। पी खरे हर पानी,

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुरसिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा गुरसिखा

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर टुठा। जन नानक हर हर होया, हर

सुख सद हुई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्हा मिलिया हर सोई जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजी तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा।

हरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चात्रक बूंद जिवें मन शीतल हुआ मेरे प्यारे हर बूंद पीवे तन

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

0: हर रंग मानी
1: हर संता हर संत सज्जन
0: मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम। हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यों हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

पंथ भणीऐ तह साध संग ना डरपीऐ कर कीरत गोविंद गुणीऐ सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर सिउ नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवै बरस सुहावे में हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हत लाइय चित।

कहा कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हर सियो की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घनी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है। हर प्रीत करी जै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै। जैसी तरन पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया

गीत की जय। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराधह ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझह आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होई गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा धार, चाह है तुझह दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेवह लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्यावह वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। बस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी, एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवह दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाईय, भेटत साधु संग जमपुर नह जाइय। दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी, सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया। मिटे तिसैव सूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उदरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी, आद अंत बेअंत खोजह सुनी उदरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावै नानक वखाणै गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरै ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नवनिद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणै गुरबचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटै संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

तपास सेवा लागी है, जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया, परम मोह विकार दूजा सगल तिनह त्यागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया, समर्थ अगत अपार निर्मल,

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहंग ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्ब सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उधारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन ने धाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

पंजवां पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपौ भय पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ।

अमृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याई पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरले किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जागह संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागह, नाम सिमरह अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। तज मान मोह बिकार मन का, कलम ला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जागह, हरदास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुख हगामी, चाव मंगल रस परी, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरी, मन इच पाई प्रभ ते आई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछ है कहो कंत नी छाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावहे, सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी, सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन तागे। आसा महला पंजवा, उठ वंज वटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया मुहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया, तो माया करह पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवें पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख भये नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरिय तारी, तरण देह ला पया।

आखिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायु गुजा कमाना प्रगट होआ ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिध चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

ना जाइय, आठ पहर हर नाम सिमरहो, चले तेरे साथी, भज साध संगत सदा नानक, मिट हैं दुख कमाते, वलवंच कर उदर पर हैं, मूर्ख गावारा, सब किश दे रहया, हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी, काए मनु विसारी है, मिल साध संगे भजन संगे, कुल समूहा तारी है, सिद्ध साधक देव मुन जन, भगत नाम आधारा, बिनवंत नानक सदा भजिए, प्रभ एक करने हारा, खोट ना कीचई, प्रभ परखण हारा, कूड़

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

पाद कमला प्रम पीत कमला प्रम पीत हे तीखन मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करहो गा।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पेख

उगवह सूरज चढ़ हजार केते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेता।

दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे वनास इक ना पाणे कड ले इक ना माया विच निवास एव पे आख ना जापई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिख नावै धर्म बहालिया

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेदह वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्ते ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थलवारो ले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई यह जंत, नानक पौंदिया गणतना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचे सब कोए, नच नच हसें चलें से रोए, उड ना जाही सिद ना होहे, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ, किन्ना मन पाओ पौड़ी, नाओ तेरा निरंकार है, नाए लए नरक ना जाइए, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जय आख गवाई है, जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुनो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हर है, जर वेस करें दी आई है, को रह ना परिये पाईये, सलोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार।

वंदना फिर फिर जोनी पाहे। हों मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए। हों मैं एहो हुक्म है पय किरत फराहे। हों मैं दीर्घ रोग है।

नानक कह सुनहु जनहु इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलै सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया, मूरख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर जा, पड़ी है जेते सास। नानक लिख है एक गल, होर हूं मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहोवे दिया अपना किया, अन्न न खाया साध गुआया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरै अहनिस कहरै, मोन बगूता क्यों जागै गुरबिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, फल मल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधै पत गुआई, विण नावै किस थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हूं मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन भाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नानक करमा बाहरे, दर ढो ना लहनी धाम दे, एक मूल ना बुझन अपना, अण हुंदा आप गणाई दे, हों ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे, तिन मंगा जे तुझे त्याई दे। श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ परजा,

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

वास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है। सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहै बाहरा कोरै रंग ना सोए भै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक भगत।

पाहे भरे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करह प्यार। धर्मी धर्म करह गावावह

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो।

पै गुनाहगार ता उमी साधना मारी है जेहा खाले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है अड़िया अत उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर बताई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगै रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगै रथवाहु द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवाहु कल युग

रखे साच रहे, सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर, राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे, नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया, बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ, नाउ खदाई अल्लोह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वण जारिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आव है आस कर, जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके, कामना आव है पत, मिठत नीवी नानका, गुण चंगे आईया तत, सब को निवै आप कहो,

मैं जो हंता मिर्गाहे सीस नवाया क्या किया जारिदैक सुदे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं द्वे तूती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुरु।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडोहो वड्डा वड मेजनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोई, नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय। महला पहला, मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे। महला पहला, सभो सूतक भरम है

तेता जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नाम रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगण वे पंडो हो ऐ दोस्ती पंडो हो चल राह पांड मोआ पांड पालिए पांड हो ऐ बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोई जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गर्भ हंडी है।

सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नजर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर काली है। सलोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गारबवाद, गल्ला करे कलेरिया, खसम ना पाए साध, आप गुआए सेवा करी।

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगा

किसनो अगली ओह वजहो पे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

आपस तेजो पाईऐ नानक सा करमात साहिब तुठै जो मिलै महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक कहदी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ता के पारावार आप कराए साख।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया पास बंद नहीं फारे, अर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपयो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तौ सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग, वे हर के संतन।

चढ़ावे है ऊपर, काठी धोए तो जलावे है, बसदा खोद करह दोए चूले, सारे मान सखावे है, वे पापी सदा फिर है अपराधी, मुखों अपरस कहावे है, सदा सदा फिर है अभमानी, सगल कुटंब डुबावे है, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जिस सतगुर भेटै, पुनरप जन्म न आवे आसा।

आओ आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे

कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाऊ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहरी काया कर तुई दृष्ट।

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाहन को

नडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोले बन नहीं आवे रहाओ रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा घट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

रफीके आप जनाए अवर कौ जाने तब हुए पिस्त सरीके माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा गगन नगर एक बूंद।

नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर का बिरह जरो रे।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या

अवतार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानंग, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जय, पास ना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेत, कनक कामन लाग, कर विचार विकार पर हर,

साज सब ठाका, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाऊ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी।

खबर ना करे दीन के बौरी ताते जन्म अलेख रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

मेरो पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ धन पेर एक है संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा धन

के दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हीरे हीरा वेद पवन मन सहजे रहे आसमाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर धरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम।

रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाऊ घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

तीर्थ लावे किस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो

ओए नर फिर जोनी आवे मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

मन सत सहंस जैसी पूत पूत प्रभ सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुद्ध बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी आसा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर कौ स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारे बछरे बीठल पहला काहे करूं।

कहाँ प्रणव पूर रहे हो तुम सर्व मही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी कहाँ करूं जाती कहाँ करूं पाती।

मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जा मह ताकी केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम ए रंड बापरे संगत मारे बासा नीच रूख ते ऊच भये हैं गंध सुगंध निवासा माधो सत संगत सरन तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम बपरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत विपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना।

आसा हर हर हर हर हर हर हरि हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाउ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमित नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाउ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना बिन

स्वामी जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाकै अशली प्रभ पहचानिया धने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद सा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदह खैर दीजह बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलिया से आले सोहंदिया फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा डेंदिया छे माह तोड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछै।

जे वेद पढ़ मुख कंठ सवार ताको अंत न जाए लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जाके त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगरा दोहों लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित काम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत होए सखाई हर दिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हूं जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

या राम राम सबको कह कहे राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे कोई।

जिन कै कपट वसै बाहर हूं संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकै अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देस जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचो हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दिखिया देवे साच बुझाए बिन पारस है पूज ना हो वई बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजे ता एह सोजी पाए हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए एह मत तेरी थिर रहे ता भरम विचों जाए रहाओ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए अठ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदै रहे आसमाए नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आए जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मनमुख बूझ ना होए गुरमत

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाउ सुख साग

आग को अमृत रस पाईए, तृप्त विष्टा खाए मुख गो है, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड भागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है, गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती, कर कृपा।

हो जानी ऊपर कर कृपा ले हो उबारी। नानक जन हर की सरनाई हर पावे हर निस्तारी। गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लावहु। हौ अन दिन राम नाम नित त्याई सब सुख सब गुण सब निदान हर। जित जपै दुख भुख सब लह जाई मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई।

लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावै मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगहा हर हर दे वडे आई धन पन सबास कह प्रभ जन को जन नानक मेन लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरिया।

उठा। जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ, वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहे जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवा चौपदी कर पहला एक ओंकार।

तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर।

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरै हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे।

जाति काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याद ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल उचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ताम है त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धरन मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लभी गुर पूरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बे

ते पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई। गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को धनी की जय। जन को अंग नरारू रहाऊ साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारु जान कवन पता। शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद।

पंजवां मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे है माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा ता

परी अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो धार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिद माहे समाए तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक भई करते की और आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस हर भोर।

ते ताहि साध संगत को जोहि न साकै मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत पर जारे मोह को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर ना।

आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाई है जाते काल न बिरथी जाई है आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याई रहाओ मोहे सरन दीन दुख भजन।

व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ई त्यागै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर तरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराद सर्व सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशनाया वै काम सरण साधु निर्मला

गुरु सो सिख कथियले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदे गिरी जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

दाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाचे हैं प्रभ नायक देंदे टोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाचे हैं रिद सिद्ध जाच करहें जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर

बूझे अंतर शब्द विचार। अब तबे और ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे, ऐसी नाम बड़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते भेख करह पिठिया को, एते उदर भरन कह ताई। बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर

जिन्ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

सब बख्श मलावे बिनमना अदुआर आई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई ऐ जी सदा दयाल दया कर रवया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई।

आई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त सुभ चिंतं गुर शब्द हर रमनं मत तत ज्ञान कल्याण निधानं हर नाम मन रमनं चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक शब्द रतं परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमति नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमनं गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारनं हर नाम रास मनं मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो

अंते जम पहो भागै रहाउ। आप न चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए। अन दिन ला

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाइए जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी अलख

नित नियारी सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिने अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवे ओहो मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी इहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहा।

पर करनी तर पात राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेत पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निध होत जिन्ना ना चीर खल मुग्द मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस हरीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार गुजरी की वार महला तीजा।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

वसयो मन आए त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो तन।

पाए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कितै ना पाईऐ। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वडियाई वड्डे की, गुरमुख बोल।

को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मरमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजे, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै भाए जाए जग प्रबोधै,

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है इना ऊपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले।

पाए, गुर कै शब्द पर जालीए, तां इह विचों जाए। तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। इहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिले, अस्थिर रह समाई।

पिए रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी। जो तिस भावै सो करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

गुरमुख बूझै कोई। वाहु वाहु बाणी सच है सच मिलावा होई। नानक वाहु वाहु करतियां प्रभ पाया कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाहु वाहु करती रसना शब्द सुहाई पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाहु वाहु मुंह कढ़ाई

आई पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभमानी भरम भूले नदर ना आवनी मन मुखियां दे अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर भेख थके भेखवानी गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते त्रिपतानी सलोक महला तीजा वाहो आहो करत्या रैन सुख विहाय वाहो आहो करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए वाहो आहो करत्या हर सिउं लिवलाए वाहो आहो करमी बोलै बुलाए वाहो आहो करत्या सुभा पाए नानक वाहो आहो सतर जाए महला तीजा वाहो आहो बाणी सच है गुरमुख लद्दी भाल वाहो आहो शब्दे उच्चरै वाहो आहो हिरदै नाल वाहो आहो करत्या हर पाया सहजे गुरमुख भाल सेवड भागी नानका हर हर हृदय संभाल पौड़ी ए मना अत लोभिया नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दह दिस फराता अगै नाउ जात न जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रसना चखियो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चा

आहे नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द समाही पौड़ी ताडी तिसनो आखिए जे खसमै तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार ताडी दर घर पाए सी सच रखे उरतार ताडी का महल अगला

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरै सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचार दा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधार दा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजै अग्न जलाई जीव दया नित जापी नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ आप।

अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर साध जना कै संग भवजल बिकम तर सेव हो सतगुर देव अगे ना मरहो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुभर भर मन को होए संतोख त्याई सदा हर सो लगा सतगुर सेव जाको कर्म धुर सलोक महला पंजवा लगड़ी सोथान जोड़न हारे जोड़िया नानक लहरी लक सै आन डुबन दे ना मापिरी महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम।

जपतियां पहुंच ना सकै कोई तेरी टेक जन। गुरपूरे वाह वाह सुख लहां चितार मन। गुरपह सिफत भंडार करमी पाई है सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताई है। रखै आप दयाल कर दासा अपने हर हर।

तवन्य मित्र असाढ़े से कौट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवै साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भौ कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

लबण हार कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार नानक ब्याह ना पसी है महला पंजवा पापड़िया पछाड़ बाण।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप

पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाहो आहो जिन हर स्यों जोड़िया नाम निदान अख

ना जाए। गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू, कमान दिया सुख पुंच, त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी। कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता हुए ता काहे डरपिए। जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आया चित निहाल साहिब बेशुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किस तिस कै वस न कोई बाहरा, सो भगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

नानक संभालिया। सलूक महला पंजवा आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया। सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। साधा संग अपार अंदिन हर गुण रवै। पाए मनोरथ सब जूनी नह पवै। सब किस करते हा।

प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत आद भाव रतन परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नाद नोत जसमरणे जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सो कृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह।

हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाओ प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाउ हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देहे टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार

अंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत सरन ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी। हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकती, ज्यो बेसवा के करपूत जमत है। तिस नाम परयो है तरक्ती रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी। ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यो नुगुरा बहु बातां जाने। ओह हर दरगाह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी। तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत। गुर सतगुर पातै सुक्ति, छका एक। देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाई है,

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यों प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

कर्म धर्म किस उपज ना आयु न उपजी निर्मल करनी चाड़ सियानप संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावह सुख सहज आनंदा काटे जम के फाहा रहाउ खोजत खोजत खोज बिचारियु हर संत जना पह आहा तिन्हें प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भाग्य।

तारहाउ जिन किया तिस सिमर प्राणी यो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावे हैं मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राख हो राखन हारा करन करा।

देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा।

जाको उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन।

मुनि परमाई टिकन ना पावे बिन सत्संगत किसे आगे जाए रुआई है करह अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चेतलाई है संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

जब चितवाऊ तब तुहारी उन समाहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं साध दरसारी मन मै राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ।

उपाय छोड न जाय सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाय रहाव मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाय अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाय मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाय कहो नानक सदा रंग।

सहारादि जो दिसकै सो गाखै साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाचै जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुतर माए आचै आए पयो नानक गुर चरण तो उतरी सगल दुराचै देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूं मद निरारी रहाऊ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

चार बरन मुक्त भये देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा।

रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई, रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गो हर की को द्वार, मिल संगत ताज अभमान, कहो नानक पाए हैं परम निदान।

साध पगां हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

अपनी सी दुर्मत ते ना तरै रहाउ मद माया कै भयो बावरू हर जस नह उचरै कर पर पंच जगत को डहकै अपनो उधर भरै स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नावा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंदप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद करी को नह राखै घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवां जगत मैं

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तौ मैं हर हर करिया तौ सुख सहजरिया रहाउ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन घिरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइया मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुभाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपूरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन हर प्रभ पासे राम। धन धन गुरु हर दसिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम बिगासे राम। राग बिहागड़ा महला चौथा, अमृत

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे।

माया राम वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुर पूरै गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए इनके सब दुख गवाया राम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए इत जपे पाप गुआते राम पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहो कुंडी चहो जुग जाते राम हौमै मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर तरनाते राम अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम अधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए बिख पौ जल तारन हारो राम जिन इक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जय कारो राम नानक हर जप सुख पा।

गुण गावे हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो शीस

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झाख मारन।

राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए।

दयाल की अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोबिंद लालन मिलहो कंत नमानिया नैन तरसन दर्श परसन नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन पये सगल शिंगारा नानक पयंपै संत जंपै मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करो उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना धीती है खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजी है आसा प्यासी रैन बिनियर रह ना सकी है एक तिल है नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम निर्गुण नमानी अनाथ बिनवे मिलहो प्रभ कृपा दे दे भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे ग्रह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइए नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उचरा हर जस

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वदाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन

जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा मोहल्ला पंजवां खोजत संत फिर हैं प्रभ प्राण आधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारी कर दया लड़ लाए लीजी है देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्श पेखे जीजी है समर्थ पूर्ण सदा निकल ऊंच अगम अपारे।

राम तपतमा कतह बुज्ज बिन स्वामी सरनाराम प्रब सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिय नाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारिय दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना हमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन हुना बीसरे आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरे अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचे अगम अपारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे बिहागरा।

गुणग पालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवरव सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर दुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो पराणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गुआया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घन विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाल।

बंधन रहत करता किया अपना पावने कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन भ्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन सम

कल्याण मैं प्रगट भय सीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाईऐ, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईऐ, हों हों करतना तृष्ण बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण परवीना।

ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ ਸਹਿਜੇ।

तुद जेवड़ होर शरीक होवै ताय आखिया, तुद जेवड़ तू है होई, जिन तू सेवया तिन सुख पाया।

पाए, गुर का शब्द संभाल तू मूड़े, गात मत शब्दे पाए, नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचों आप गवाए पौड़ी, जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनू क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है, हर सुखदाता सबना गल्लां का, तिसनू त्याए दिया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है, जिन हर त्याया तिसनू सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है, सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़िए, हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठे, जगत तरिया सब लोड़िए। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाउ वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत।

कराई। हरियापी वीखे विगसै आपी, जित पावे तित लाई। हर इक ना मार्ग पाई आपी, हर इक ना उजड़ पाई। हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वीखे चलत सुबाई।

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातमा दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राहत आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुआ हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा कर्म धर्म सब बंदना पाप पुन सन बंद।

0: लाई।
1: गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आई, नानक नदरी पाई आपे लय मलाई पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजै, आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै। आप परविरत आप निर्विरती आपे अकथ कथीजै, आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वरतीजै।
0: आपे सुख दुख देवै करता
1: आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छड तू पहो कर झल गवाए, गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए, शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

पर बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मरदाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, हादे जाहे विकार। मरदाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया। आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

राखा आपे रहे आसमाय। जन नानक वडियाई आख हर करते की, जिसनो तिल ना तमाय। श्लोक महला तीजा, मानस भरिया आणिया, मानस भरिया आए। जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए। अपना पराया ना पछाणे, खसम हो धक्के खाए। जित पीतै खसम विसरै, दरगाह मिलै सजाए। झूठा मद मूल ना पीचै, जे का पार वसाए। नानक नदरी सच मद पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। सदा साहिब कै रंग रहै, महली पावै थाउ महला तीजा। एहो जगत जीवत मरै, जाय सनो सोजी होए।

गुर प्रसाद जीवत मर ता फिर मरना होए पौड़ी। जिसदा कीता सब किश होए तिसनो परवाह नाही किसे केरी। हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कढ़े तेरी। जे तुदनो सलाहे सो सब किश पावे।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत पूजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारी पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए।

सुगत सो पाए, जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सबको वसे, भेखी जोग ना होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी, जिस घट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार,

गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरा सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाय नाम परमल हृदय रहया समाय नानक मस्तक जिस वडभाग गुर की बाणी सहज बैराग वडहंस महला तीजा पूरे गुर ते नाम पाया जाय।

मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्म जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हों क्या करी दोहागण नित

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा। सो पिर प्यारा मैं नदर ना देखै हौ क्यों कर धीरज पावा। जिस कारण हो शिंगार शिंगारी सो पिर रता मेरा अवरा। नानक तन तन तन सुहागण जिन पिर रावड़ा सच सवरा। हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों पिर पायड़ा। प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी पिर साचै। मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का। इत मार्ग भैने मिलिया आपनड़ा प्रभ नदर कर देखै। नानक जोत जोती रलिया जो हर

पानी धोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सत गुर पासो हो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन

आप खाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जाप हर सेती रलिया वडहंस।

अंत नाही किस पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै, एक तिल ताका महल ना पावे। सहावी कौन सो वेला, जित प्रभ मेला रहाव। लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पुगीसर भोग है भोगा। कट कट वस है जान है थोड़ा,

संतन पह आया दुख भ्रम हमारा सगल मताया महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडांस महल।

रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

जाति जिसह जनाब हो तिनह तुम जाति सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल थल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरल परे हो नानक हर द्वारे बड़ा हंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

माली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

हो जमहु उबारी जुगह जुगंतर भगत तुम्हारी वड्डे मेरे साहिबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हौ आख ना जाना नजर करह ता साच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावे दुख भूख संसार किए सहसा एहो चकावे बिनवंत नानक जाए सहसा बुझै गुर बिचारा वड्डा साहिब है आप अलख अपारा तेरे बंके लोएन दंतरी साला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोयने की ताला स्वर्ण ताला कृष्ण माला जप हो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साह सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे आपर पूरे राम फिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

बीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम। अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़ भागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम। खोटे दरगहा सुतियन उभे करन पुकारा राम। उभे करन पुकारा मुगद गुवारा मनमुख जन्म गवाया। विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया। मनमुख संतान नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रुबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हूं मैं मैल परिजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई

सेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर।

राम। जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई। हऊ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे। हऊ जीवा सतगुर देख सरसे। कोई आण मलावे, मेरा सतगुर पूरा राम। हऊ मन तन देवा, तिस काट शरीरा राम। हऊ मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए। मेरे मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम तू।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम पौ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हर आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा हौ गुर बिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुर बिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया

तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा सारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी।

से परधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु झूठा हमें बूठा सुख भये दुख नाश भरम बनाश तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींडे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलह।

यहा पूर्व कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गर्व कीजै जित सेवै दरगाह सुख पाई नाम तिसे कालीजै आगे हुक्म न चल।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन्ही लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन

ना मंदा लोका आकी है, जे मर जाना ऐसा कोई, सेवे हो साहिब समृत अपना, पंथ सहेला आगे होए।

जे कोई मर जाण मरण मुनसा सूरियां हक है जो होए मरण परवान सूरे से आगे आखी है दरगाह पावे है साची मान दरगाह मान पावे है पत स्यो जावे है आगे दुख ना लागे कर एक त्यावे है ता फल पावे है जित सेवे है पौ भागे है

परवान। नानक किसनो बाबा रोइया बाजी है ओ संसारु। कीता वेखै साहिब अपना कुदरत करे बीचारु। कुदरत बीचारी धारन धारी जिन किया सो जाने। आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै।

दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ जी नाले जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले आप निरालम धंदे बाधी।

रेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा कर सचड़ै सेवी है।

अपने कंत संभाल है ना कदे लग्या विजोगो सचड़ा पिर सलाही है सब किस करने जोगो सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लए मलाई सा धन प्रिय कै रंग रत्ती विचों आप गवाई विचों आप गवाई फिर काल ना खाई गुरमुख एको जाता कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राती जोब नमाती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संता जाए आप छोड़ सेवा करी फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग

समाए, जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतम है जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपुरै हर उपदेश।

के नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख

ना हो गई, अचिंत वत्सै मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय, सज्जन मिले सज्जना, सच्चै शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह लिबलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जिते हर का हर नाम बिलोइया, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोइया, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोइया, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोइया, तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोइया। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिल है प्यारिया सो तुद मिल गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रत्ना पारख जो होवै सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझै बूझन हार। मूर्ख आप गणाइंदे मर जम्मै है होए खुआर। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगै प्यार। सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार। किरपा करे जे अपनी ता हर रखा उरतार। महला तीजा।

पातशाही भगत जना को दितियन फिर सत सच्चा हर बनाए सदा सुखिए निर्मले सतगुर की कार कमाए।

साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुर सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

सुहणे गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सोभा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवे हों मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए नानक पूरे कर्म

पछताए महला तीजा। इस जग में है पुरख एक है, और सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लख ना लखना जाई। पूरा गुरवे खा लिया, शब्दे सोजी पाई, पुरखे सेव है से पुरख हो वह, जिन्नी हों मैं शब्द जलाई। तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई।

हर रतन है मुक्त करावन हारा, नानक जिसनो नदर करे सो पाई, सो हुए दर सचियारा पौड़ी। तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरनी जाए पया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजे पाए। रिद सिद्ध।

पौड़ी जिन उपाए जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिन्हें विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना

0: मन हर सरनी पड़ रही है,
1: हर बिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है, उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुम्हाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यों झूठ प्रीत मन

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई निर्भउ निरंकार निर्वैर पूर्ण ज्योत समाई नानक गुरविण।

होत तुम्हारी तेरा रूप कनेहा इकत रूप फिर परछन्न कोई ना किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज।

मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै, सूठ महला पहला, हौ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी, अमृत चाख परम रस राते, ठाकुर शरण तुम्हारी, करता तू मैं मान निमाणी, मान महत नाम धन पल्ले, साचै शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते एहनस प्रभाते, हर रसना जप मन रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, एहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे, अवर ना दीसै किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई, सोठ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजोनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचै शब्द नीशान रहाओ, ना तिस मात पिता सुत बंदप, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, कट कट जोत सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई, जंत उपाय काल सिर जंता, वसगत जुगत सबाई, सतगुर सेव पदार्थ पावह, छूटह शब्द कमाई, सूचै भांडै साच समावै, विरले सूचाचारी, तंतै कौ परम तंत मलाया।

तिहारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ नरारे, बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। सोठ महला पहला, जिस जल निद कारण तुम जागे आए। सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो हो वेस भेख चतराई। दुबदा इहो फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे है,

सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जीओ। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो हो काही जीओ। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जीओ। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो हो।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसर सुख होई जियो पीवो हो अपे परम सुख पाई है निज करवास।

रहाउ, जागत रहे तिनी प्रभ पाया, शब्दे हम मैं मारी, गिरही मह सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत बीचारी, सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राखिया उर धारी, एहु मनुआ दह दिस धामदा, दूजै भाई खुआया, मनमुख मुगद हर

आया पूरे गुरु की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा वो पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रता एक रंगी शब्द सुवारण हारा सोठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यों रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेख मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर पाई अवर ना दूजा कोई।

आप राखै जो तेरै मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल,

कमावह ना बूझह विचारी। निंदा दुष्टि ते केन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी। प्रहलाद जन सद हर गुण गावह हर जियो लय उबारी। आपस कहो

हृदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा, सदा हजूर रविया सब ठाई। हृदय नाम अपारा, जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा, सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया, हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया, कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया, राम नाम की गत कोई ना बूझे,

नानक नाम समल है सेजन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई भाई जीवत मर

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाऊ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साध न आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेख घर अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुरु दाता मेल मलाव हो। हर नाम देव हो आधारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज सुमानी। पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल होआ। किल बिख काटन हारा शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई। दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जापह से। सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बोराना मनमुख अंधा शब्द ना जाने। झूठे भरम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया भरम भुलाया। हउमे बंधन कमाए जमन मरन सिर ऊपर उभो

अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सोहोए, सब नारिजक समाह दा प्यारा।

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तलाया आपे साह आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यार पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाउ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया

कै नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहताजा रहा, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

आस पुजाई दास अपने कौ तू विसरह नाही चरण धूर मन भाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निधान सुख दाते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी।

साध शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाउ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिय एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारे राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाई सर्व सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइय हिरदय त्याई सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पा।

करै सो भला मनाइए सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयों दर्शन हर जियो पाइए भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेहे प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जेहे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेहे नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेहे गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेहे प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रते ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सूरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारी।

संतन सिंह हमला खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिंह मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भाने अंतर बिद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी पार

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह ना जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहा सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरदा।

अब हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अग्न को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे ओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न ना अंतर तुकी

जस गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

सो ही पावों अपनी खसम भरोसा। कहो नानक गुरु पूरा भेट्यो मिट्यो सगल अंदेसा। चौठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना। सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी। मन इच्छे फल पाया मेरा गुरु पूरा सुखदाता। करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहा।

आप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरनी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई।